ऐसे लोग तो तुम्हारी जिंदगी में बहुत आएंगे अफसर बेटी, और जानती हो कब कब, जब जब तुम ऊंचाई की तरफ जा रही हो, चल रही हो। ये जो थिएटर की दुनिया है ना, ख्वाबों की दुनिया की तरह बिल्कुल नकली है। ये लोग जब किसी को चाहते हैं ना, तो आसमान की ऊंचाई भी कम मालूम होती है। जीना कहाँ, मरना यहाँ।